महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।

0: आता रेडिओ मनभावन सोबत करा मनमोकळ्या गप्पा दर मंगळवारी दुपारी 12 ते 12:30 या वेळेत. त्यासाठी तुम्हाला फोन करायचा आहे मंगळवारी दुपारी 12 ते 12:30 या वेळेत. फोन क्रमांक 9284499433. क्रमांक पुन्हा एकदा 9284499433. हा कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. गुरुवारी सकाळी 8 आणि सायंकाळी 4 रेडिओ मनभावन 90.8 FM.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, आजकल एक होड़ लगी है कौन कितनी ऊंची इमारत बनाता है. हम कंक्रीट और पत्थर के ऊंचे ऊंचे महल खड़े करते हैं और फिर नीचे खड़े होकर बड़े गर्व से अपनी ही बनाई उस छत को देखते हैं. हमें लगता है कि जितनी ऊंची हमारी दीवारें होंगी उतना ही ऊंचा हमारा नाम होगा. हम उन पत्थरों में अपनी पहचान ढूंढने लगे हैं. लेकिन कबीर साहब आज उन ऊंचे महलों के मुंडेर पर बैठकर हमें नीचे की ज़मीन दिखा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि भाई, जिस आसमान को तुम छूने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना कि तुम्हारी आखिरी मंजिल ये नीचे वाली मिट्टी ही है. आइए जानते हैं कबीर की नज़र में ऊंचे मकानों की असलियत क्या है. कबीर कहा गर्बियों ऊंची देखी आवास, काली परियों भुई लोटना उपरी जामे खास. कबीर कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवास,

0: आवाज। श्रोताओं, कबीर साहब बड़े सीधे सवाल करते हैं। कबीर कहाँ गर्वियों, ऊंची देखी आवास। अपने इस शानदार महलों को, इन ऊंचे आलिशान मकानों को देखकर इतना गर्व क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये पत्थर तुम्हें बचा लेंगे? कबीर एक बहुत ही निष्ठुर पर अटल सत्य को सामने रखते हैं। काली परियों भुई लौटना, कल यानी आने वाले समय में तुम्हें इसी भुई यानी जमीन पर लौटना होगा, लेटना होगा। और ऊपरी जामे घास, तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। कबीर यहाँ कब्रिस्तान या श्मशान की उस खामोशी की बात कर रहे हैं जहाँ राजा और रंग दोनों की कब्रों पर एक जैसी घास उगती हैं। इसे ऐसे समझिए कि वक्त एक ऐसा बिल्डर है जो हर ऊंची इमारत को एक दिन मलबे में बदल देता है। हम जिसे अपना परमानेंट एड्रेस कहते हैं, वह महज एक पड़ाव है। कबीर कह रहे हैं कि मकान चाहे कितना भी ऊंचा हो, इंसान की कद काठी और उसकी कब्र की लंबाई लगभग बराबर ही होती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने घर को देखिए। हम मकान बनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपना भीतर खाली छोड़ दिया है। हम बाहर की दीवारों को रंगते हैं, पर क्या हमने हमारे मन की दीवारों पर प्रेम और करुणा का रंग चढ़ाया है? ऊंचे मकानों में रहना बुरा नहीं है, पर उन मकानों को अपनी अकड़ बना लेना बुरा है। आज कोशिश कीजिए उस घर को संवारने की जो आपके जाने के बाद भी नहीं गिरेगा, और वह घर है आपकी यादें और आपका नाम। जब आप जमीन के नीचे होंगे, तब दुनिया यह याद नहीं रखेगी कि आपके पास कितने कमरे थे, बल्कि यह याद रखेगी कि आपके दिल में दूसरों के लिए कितनी जगह थी। अपनी जड़ों को मिट्टी से जोड़ कर रखिए, क्योंकि अंत में वही लौटना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आरजे स्वरा। अपन ट्यून केले रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: मी आरजे स्वरा आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: सब होने चला है, अंदर से आवाज आई।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरी। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: फोन चलाई, अंदर से आवाज आई।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग।

0: की एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा
2: जा जा।

0: है ये बेअदब कनीज़ो।
1: बेअदब जरूर है लेकिन शेर अच्छा कहा है। खातून आगे आओ। माँ बदौलत ने अब तक सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत शेर सुना है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कौन हो तुम?
0: आपकी कनीस अर्जुमन बानो।
1: अर्जुमन बानो? आसिफ खान की साहिबजादी, मिर्जा कयास की पोती। सुभान अल्लाह, ई खाना हम आफ्तावत। हमने तो समझा था इस बहरे हुसन का सबसे चमकदार मोती हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे दुरे नायाब मौजूद है। अर्जुमन, तुमने एक शेर पढ़कर हमारी आतिश शौक को भड़का दिया है, हम पूरी गजल सुनना चाहते हैं। बैठ जाओ।
0: जो हुक्म आली जाए।

0: ओ, ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

0: मी विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, आजकल एक होड़ लगी है, कौन कितनी ऊंची इमारत बनाता है। हम कंक्रीट और पत्थर के ऊंचे ऊंचे महल खड़े करते हैं और फिर नीचे खड़े होकर बड़े गर्व से अपनी ही बनाई उस छत को देखते हैं। हमें लगता है कि जितनी ऊंची हमारी दीवारें होंगी उतना ही ऊंचा हमारा नाम होगा। हम उन पत्थरों में अपनी पहचान ढूंढने लगे हैं, लेकिन कबीर साहब आज उन ऊंचे महलों के मुंडेर पर बैठकर हमें नीचे की ज़मीन दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, जिस आसमान को तुम छूने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना कि तुम्हारी आखिरी मंजिल ये नीचे वाली मिट्टी ही है। आइए जानते हैं कबीर की नज़र में ऊंचे मकानों की असलियत क्या है। कबीर कहा गर्बियों ऊंची देखी आवास, काली परियों भुई लोटना उपरी जामे घास। कबीर कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवास,

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरी। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: जो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने थे कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे शुभांगी और आप सुन रहे हैं रेडियो का फेवरेट शो ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभांगी के साथ। आज हम किसी मामूली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और सभी मुस्कुरा भी दें। जी हाँ, द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि अगर वो पहाड़ को सलाम कर देते तो पहाड़ भी झुककर कहता, भाई साहब एक गाना और हो जाए।

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज भी हर शादी में दूल्हे की एंट्री पर बजता है, चाहे दूल्हा फूलों जैसा हो या चलिए छोड़िए। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लगा कि स्टूडियो में सच में फूल गिर रहे हैं। चलिए सुनते हैं सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ।

0: दोस्तों, अगला गाना उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते, बस ये गाना सुनकर ही अपनी कैलोरीज जो होती है वो बर्न कर लेते हैं। रफ़ी साहब थोड़े शर्मिले थे जब आरडी बर्मन ने ये हाई एनर्जी गाना उन्हें दिया, तो रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम ये गाना है या मैराथन? पर जब गाया तो सच में वो रॉक स्टार बन गए। वो गाना है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तीसरी मंजिल से ये गाना सिर्फ आपके लिए।
1: आजा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मैं हूं आपकी आरजे शुभांगी। ओल्ड इज गोल्ड में हम आज सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन नगमे। तो लीजिए, अब पेश है वो गाना जिसे सुनकर यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उन्होंने 3 दिन तक बात तक नहीं की थी। घर वाले डर गए थे कि कहीं रफ़ी साहब मौन व्रत पर तो नहीं चले गए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा मूवी से।

दोस्तों, अगला गाना उन प्रेमियों के लिए जो सोचते हैं कि उनका प्यार सीक्रेट है, जबकि पूरी मोहल्ले की व्हाट्सएप कम्युनिटी को पता चल चुका होता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको जवाब ना सूझे, तो बस ये गाना गा देना, जान बच जाएगी। तो ये गाना है चौधरी का चांद हो, चौधरी का चांद फिल्म से ये गाना। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आरजे शुभंगी के साथ। आजकल लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने तो सितारों की साड़ी ही पहना दी थी। लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना, प्रिंस फिल्म से, बदन पे सितारे लपेटे हुए।

0: भेजा सरकार ने।
1: कहने का है कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: दोस्तों, अगला गाना जो है ये गाना ऑफिस जाने वालों के लिए नेशनल एंथम होना चाहिए। आप सोचेंगे भाई क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर के लिए गाते वक्त रफ़ी साहब खुद भी वैसे ही चेहरे बनाते थे जैसे जॉनी स्क्रीन पर बनाने वाले थे। तो ये गाना है डेडिकेटेड ऑफिस जाने वालों के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, पैसा फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा सा सुनते हैं।
1: मालिश तेल मालिश चंपे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग आरजे शुभांगी के साथ। हम किसी से कम नहीं, फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने उधार लेकर वापस नहीं किया। भाई वादा तो किया था, लेकिन वादे का क्या हुआ? सुनते हैं बहुत ही बढ़िया सा गाना।

दोस्तों, जब मदन मोहन का संगीत और रफी जी की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे मलाई में केसर मिल गया हो। अगला गाना सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से, तुम जो मिल गए है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी साहब।

दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में अगला गाना सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। झरोखे में बिठाया तो ठीक है, बस सिक्योरिटी गार्ड मत लगा देना।

दोस्तों, रफ़ी साहब इतने दरिया दिल थे कि कई बार नए संगीतकारों से सिर्फ 1 रुपया लेकर गाना गा देते थे। आज के दौर में 1 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन रफ़ी साहब सच में जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। कव्वाली का असली मज़ा, रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के तो पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आ जाए शायद।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: दोस्तों, आज का ये ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, ये महफिल और ये समा सिर्फ और सिर्फ उस आवाज के नाम है जिसे सुनकर फरिश्ते भी रुक जाते हैं। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी वो सूरज है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। आज ओल्ड इज गोल्ड में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम रफ़ी साहब की उस रूहानी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ सादगी और सुरों का संगम था। तो क्या आप तैयार हैं इस सुरीले सफर के लिए? लीजिए, सुनते हैं अगला गाना, बाबू समझो इशारे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। ये गाना, ये गाना आज की ट्रैफिक पुलिस वालों को डेडिकेट करना चाहिए सच में।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

दोस्तों, क्या आपको पता है उनका बचपन का नाम फीको, मतलब उनके घर वाले रफ़ी साहब को फीको बुलाते थे। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो एक फ़कीर के पीछे पीछे गाना गाते हुए संगीत की दुनिया में आए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म से ये गाना, धुएं में छल्ला उड़ाना रफ़ी साहब ने ही सिखाया, लेकिन याद रहे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं।

जब रफ़ी साहब ने 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया, तो इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाकर चांदी का मेडल भी दिया था। रफ़ी साहब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो ज़कात मतलब दान के पैकेट गुमनाम तरीके से बांटते थे ताकि लेने वालों को शर्मिंदगी ना हो। कई बार तो उन्होंने छोटे प्रोड्यूसर से सिर्फ 1 रुपये लेकर ही गाना गा दिया था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, तेरे घर के सामने मूवी से, दिल का भंवर करे पुकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आज शुभांगी के साथ। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली फिल्म से ये गाना, शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज और रफ़ी साहब की आवाज़। याहू की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया क्या? नहीं, सुनते हैं ये बेहतरीन गाना।

दोस्तों, पुराने जमाने में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टा, ना फेसबुक, फिर भी अपनी फीलिंग्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। वो कैसे? जी हाँ, उस जमाने में खत लिखे जाते थे। आज तो ब्लू टिक देखकर ही ब्रेकअप हो जाता है। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना कन्यादान फिल्म से, लिखे जो खत तुझे।

तो दोस्तों फिर से एक बार जंगली फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जब रफ़ी साहब मुझको मेरे ही रंग में रंग दे गाते हैं, तो लगता है कि दुनिया में बस प्यार ही प्यार है, बाकी सब मोह माया है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म से।

दोस्तों इसके बाद सुनते हैं तीसरी मंजिल, ओ हसीना जुल्फों वाली, जुल्फे और हसीनाएं। रफी साहब की आवाज में जो खनक है वो किसी हीरे से कम नहीं।

0: अपन आपको?
1: हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में गाया, लेकिन क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने अंग्रेज़ी, डच, स्पेनिश और फारसी समेत 14 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे। जब किशोर कुमार के लिए गाया, वैसे तो दुनिया इन्हें कॉम्पिटिटर मानती थी, लेकिन हकीकत में दोनों पक्के दोस्त थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए शरारत और रागिनी जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। किसी की तारीफ करनी हो तो रफ़ी साहब से सीखे। रफ़ी साहब जिस अंदाज में तारीफ करते थे, वो अंदाज ही अलग था। ससुराल फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM ओल्ड इज गोल्ड आर्य शुभांगी के साथ। दोस्तों कई बार मैं सोचती हूँ जब ये गाना सुनती हूँ कि आंखें गुलाबी कैसे हो सकती है। हो सकती है क्या? जी हाँ, ज़रूर हो सकती है। जब रफ़ी साहब गाना गाएं तो कुछ भी हो सकता है। शायद नींद पूरी नहीं होगी या फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में जो नशा है वो ज़रूर उस पे चढ़ा है, इसलिए आंखें गुलाबी हो सकती है। द ट्रेन फिल्म से गुलाबी आंखें।

तो दोस्तों अब सुनते हैं कर्ज फिल्म से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर। ऋषि कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने ऐसा जादू किया कि आज भी डीजे पर ये गाना जब बजता है तो लोग नाचने लगते हैं।

दोस्तों, अभी सुनते हैं एक ऐसा गाना जिस गाने को गाते वक्त खुद रफ़ी साहब फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की विदाई का वक्त करीब था और ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड तभी किया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के स्टाइल को अगर किसी ने आवाज दी तो वो रफी साहब थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी जी स्टूडियो के बाहर खड़े होकर रफी साहब को एक्शन करके दिखा रहे थे ताकि रफी साहब वही शरारत अपनी आवाज में ला सके। ये गाना था तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा मूवी से ये गाना सुनते हैं।

दोस्तों, रफ़ी साहब ने कहा था कि आवाज़ कभी नहीं मरती, और उनकी आवाज़ तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। मैं हूँ आरजे शुभांगी। रेडियो पर प्यार बांटते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर ज़िले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम फीको था। रफ़ी साहब के गायकी के सफ़र की शुरुआत एक फ़कीर का पीछा करते हुए हुई थी। वो फ़कीर गलियों में गाते हुए निकलता था और नन्हे रफ़ी उनकी नकल किया करते थे। फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, दुलारी फिल्म से सुहानी रात ढल चुकी।

0: कर चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
1: दोस्तों, जब हम रफ़ी साहब के खासियत के बारे में बात करते हैं तो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिस अभिनेता, जैसे कि दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर या ऋषि कपूर या और कोई, तो इन अभिनेताओं के लिए जब वो गाते थे अपनी आवाज़ उसी के चेहरे और हाव भाव के अनुसार ढाल लेते थे। यही खूबी उनमें थी। शम्मी कपूर साहब कहते थे, रफ़ी साहब ने मुझे मेरी आवाज़ दी। याहू जैसा गाना रफ़ी साहब की ऊर्जा के बिना अधूरा होता। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, मेरे सनम फिल्म से पुकारता चला हूँ मैं।

तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय संगीत जगत का वो अनमोल रत्न है जिनकी आवाज़ को खुदा की आवाज़ कहा जाता है। रफ़ी साहब ने मराठी में भी कुछ बेहद खूबसूरत गाने और अभंग गाए हैं जो महाराष्ट्र के घरों में आज भी गूंजते हैं, जैसे कि हा छंद जीवाला लावी पिसे।

दोस्तों पंचमदा के साथ उन्होंने तीसरी मंजिल में रॉक एंड रोल का वो जादू बिखेरा कि पूरी दुनिया झूम उठी। रफी साहब एक ऐसे फरिश्ते थे जो दुनिया को सुरों की विरासत देने आए थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं तो सिर्फ गाता हूँ, सुर तो ऊपर वाला लगाता है। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ तब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान भी रो रहा था। उनके जनाजे में हजारों की भीड़ थी जो किसी बादशाह की विदाई से कम नहीं थी।

0: इतनी मुसीबत कैसे हो छोटे
1: भाई, ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
0: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
3: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: वक्त ने किया।
1: हाय, मी आरती स्वरा। आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

ठहर मोहिनी। देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी।

0: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

0: पूरी होंगी उनकी सब फरमाइशें, एक भी हमसे न टाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: प्यार के कैदी जरा संभल जा।

0: क्यों है?
1: ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है।
0: अगर मुझसे प्यार होता तो यूँ न कहते।
1: तो क्या कहता?

0: अच्छे हम अकेले
1: गरीब साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: क्या पतंगे चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: किसी के।
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो देना किसी के।
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे
1: अच्छा जी।